0: कहो नानक सब तेरी वड्याई,
1: कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु।
0: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री

0: जेंदल लगा गया जनरल भाई शबेग सिंह जी धर्म की खातर जिंद लगा गया जा गया जनरल भाई शबेग सिंह जी धर्म की खातर जिंद लगा गया।
1: जद तक सूरज चंद रहेगा योधे नु सिर न्यूंदा रहेगा जनरल भाई शबेग सिंह जी अमर रहेगा।

हों मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

0: ते जप करना ते तेल पाना है। पढ़ना ते जपन विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ए बोल है। पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपन लग्यां बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहिंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने। पढ़ना उसनू कहिंदे ने मैं सामने देख रहा ध्यान बाहर है, पर जपना उसनू कहिंदे ने हुण ध्यान अंतरमुखी है, हुण सुनना आरंभ हो गया। मैं पढ़ना इस वास्ते है बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप हो जावां, प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कवाइए सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवान साहेब ले मिले। जैसे तो भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा, और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा। यकीन जानो जिस भी अवतार दी शमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा। सारे रोग भज जाणगे, अंधेरा ही रोग है, अंधेरे दे नास होंदिया होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा, सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी। पर अंधेरे दे होंदिया होया सारा स्वप्न डक जाएगा, सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे आनंद ते पर्दा पै जाएगा। और अंधेरा रोग दी तरह, भयंकर भटकना दी तरह, ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसी चानने दी औषधि समस्त संसार विच वंडदे रहे और कहिंदे रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि है, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहिंदे दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वेर। संसार दे इतनियां औषधियां मौजूद ने, पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने। कारण औषधि एक रोग नू दवांदी है, दूसरे नू पैदा कर दी है, दूसरे नू दवांदी है, तीसरे नू पैदा कर दी है। इस सच्चाई नू हुण डॉक्टर वैद कबूल करन लग पए ने। ठीक है, जिस रोग दी पीड़ा हो रही है उस रोग नू दवा दिता, और जितनी मिकदार दे चे पीड़ा एक रोग दबदा है इतनी मिकदार दे चे दूसरा रोग पैदा होंदा है, उहदी पैदाइश होंदी है। तो सारा जीवन रोग विच बतीत हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने एक ऐसा दारू भी है, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ने रोगां घाण। ये रोगां दा सारा कहानी खत्म हो जांदा है। जन्म जीवन ते मरण ते नहीं मिट जांदे ने, यही रोगां दा खाण है, यही रोगां दा इकट्ठ है। और ये सारे दे सारे नाश हो सकदे ने आत्म प्रकाश नाल, आत्म चिंतन दे नाल। सारा अंधकार दा रोग खत्म हो सकदा है और जिंदगी एक महान दिवाली बन सकदी है, प्रकाशमयी हो सकदी है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

रोशनी ने अवगुण अंधेरा। जितने अवगुण होंगे उतने ही भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतना ही उदी जिंदगी देश चानना होगा, प्रकाश होगा। और जीवन सही मार्ग पे चल रहे हो तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया तो चल दी की है, सुरत चल दी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गए, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन गुरु, गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु की हजूरी नसीब हो गई। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उठे सी। वह राजर हाजर चलना ते सुरत ने ना, सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ ले चावे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये स्रोता है, ये सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक कोई समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घटदियां ने। जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटदी, एक सैकंड दे घटदी। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुनिया, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थे, ऐ ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी इक चिन्ह विच है, निर्माण कीर्तन गावो कर तेका निमक सिमरत जित छूट है। निमक, निमक एक सैकंड है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नूं कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा के इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना, ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां प्यास कल मिटेगी के हुणे मिटदी, मैं भोजन हुण छका

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है, जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है ओ ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखा दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: जय प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावहे
0: जिसको सिमरत परमगत पावे
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर
0: चाहते आये सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरोत सरसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ते आये ते हमन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: जिसे त्यागत अवर लुभावे
1: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस का विजय
1: जय प्रसाद तुझ सब पू मन
0: मुक्ता को जस रसन बखाना
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जपत दरगाह मान पावहे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: जय प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला बोत सलाम स्नेही
1: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन साल साल सिमरो प्रभु विचे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद अपूखन पहरी जय
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे
1: जय प्रसाद असवर सवारी
0: मन तिस प्रभु कभु न बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना
0: राग प्रे प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याई
1: इसे ध्याई जो एक लख है
0: यहाँ उहा नानक तेरी रख है
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: जिस प्रभु सास सास तारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी नीति जात
0: प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत रहै
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: जय प्रसाद सुनहि कर्ण नाद
0: जय प्रसाद पेख विस्माद
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
0: जय प्रसाद सुख सहजे वसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जय प्रसाद परम गत पावहे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जग
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप
0: जय मन मूड तू ताको जाप
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: जिसे जान मन सदा हजूरे
1: जय प्रसाद तू पावे साच
0: जय मन मेरे तू तास्यो राज
1: जय प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सोनाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपाते होए प्रकाश
0: प्रभु दयाते कमल विकास
1: प्रभु सुख प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दयाते मतूतन होए
1: सर्वन धन प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जब जत लाभ होते तत लगे हैं हर नाथ
0: नानक इनके कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा राष्ट्रपति
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग मन सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत न बेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे सम्मानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथूं पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस्सो नी बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हों ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पटाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कभू पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लहै
0: साधु के संग अजर सहै
1: साध के संग बसै थान ऊचै
0: साधु के संग महर पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग सो बासुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्व थान गम
0: नानक साध का संग सकल जन्म
1: साध का संग नहीं कष काल
0: दर्शन भेटत होत निहाल
1: साध का संग कलूकत हरै
0: साध का संग नरक पर हरै
1: साध संग इहा उहा सुहेला
0: साध संग विश्रथार मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसै
0: नानक कुदरे साध सुन रसै
1: साध के संग सुनो हर नाउ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसरै
0: साध संग सर पर निस्तरै
1: साध के संग लगै प्रभ मीठा
0: साधु के संग करकट दीठा
1: साध संग भई आज्ञाकारी
0: साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा भेद न जाने हैं
0: जिता सुन तेता बखियान
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख
0: कस बिन कोए
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमले लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: जो बसता को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक जो पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवाल
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी का कर सदायानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या ना ही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्ण सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद मिथ्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कत हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो वत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म शुद्ध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने स्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिख काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे नहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक पर क ਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵਿ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋਤੇ ਤਿਤ ਲਗਨਾ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬ੍ਰਿਖ ਨਿਪਜਾਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਿਰ ਛਤਰ
1: ਸਗਰ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੇ ਅਰਸ਼ਾਸਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਗਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ
1: ਸਾਪੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸੀ ਖਾਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲ ਥਕ ਪਾਹੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾ ਚਿੰਤ
1: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਵੈ ਰਾਗੀ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜ ਅੰਤੇ
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ
0: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
0: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
1: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ
0: ਕਈ ਜਗ ਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ
0: ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ
0: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਦੇਤੇ
0: ਤਨ ਹਰ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵ ਹੈ
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਭ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ
0: ਅਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ
0: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਜਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਤਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨ ਉਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੂਲੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
0: ਨਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਬ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਪੀਠ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ
0: ਅਨਕ ਲਾਉਣ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन कुम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंत होए कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना नानक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नै तृप्तावे खप खप मरे
1: बिना सुन भोग नहीं को राजै
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजै
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करना हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पया ने
1: मरे न बिनसै आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रतिया सबके साथ
1: आप तीनों आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किस होए
0: अंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवै
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन

0: का दुखी अंतर ते थोथा
1: सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहि
1: अपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार
1: नानक संत भगता लए उबार
0: संत का दुखी इउं बिल लाए
1: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
1: जो पावक इंदन नहीं त्रापै
0: संत का दुखी छुटै अकेला
1: जो बवाड़ तिर खेत माहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
0: कीर्तन दिक्का तुर ही पया
1: नानक जो तिस भावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न त्रिष्टै कोई
1: जैसा भाव है तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मिटै कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसके हो करने हार
1: सदा सतस को नमस्कार
0: रापी उसत कर हो दिन रात
1: तिसे त्यावो सास गिरा
0: सब कछ वर्तै तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करने हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: तिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
1: वडपा की नानक जन से श्लोक
0: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राय
1: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
0: मनुख की टीक बिरथी सब जान
1: देवन पौ एक है भगवान
0: जिसके दिया रह अगाहे
1: और न तृष्णा ला गया
0: मारा रख है एको आप
1: मानक टैक्षना ही हाथ
0: इसका हुक्म भू सुख हो
1: इसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिघन ला गया कोय
0: उसत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सहेला कर ले जियो
0: नैनो बेग ठाकुर का रंग
1: सदा संग बिन सह सब संग
0: चलो मार्ग गोविंद
1: बेटा पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: हर गया नानक उजल मथा
0: बड़ भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: चेतन मंतक नि संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछान
1: तुत कियो सोझी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तने निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
0: आन दिन कीर्तन केवल बखयान
1: मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: जिसकी कटिए जन की फसा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक दिशा न लागे दुख
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
1: सो संत सोहेला नहीं बुलावे
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोधत सोधत सोधत सीजया
1: प्रसाद तत् सब पूजे
0: जब देखो तब सब शमूल
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
0: न किस जन मैं न किस मरे
1: अपने चलते आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
0: आपे आप सगल में आप
1: अनक युग तरच था प्योथा
0: अवनाशी ना ही किस खंड
1: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
0: लख पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए तो नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
1: सगल संसार उदर तन मंत
0: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण
0: आपे मेल लय कृपाल
1: गुर का शब्द जप भय निहाल
0: गुर की सेवा सो ही लागे
1: जिसनो कृपा करे बट भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग
1: सदा सताप सह हर संग
0: भाई हो वैसो हो
1: करने हार पछाने सोए
0: रब का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
0: जिसकी उपजे तिस माही समाए
1: सुख निधान उन्हों।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप होत उदहार
0: आप तरह लोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आये
0: कर कृपा प्रभु आप मलाये
1: मिट गए वैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आज जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नवहि खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: लहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: Ek Omkar Satgur Prasad.

बौड़ी नानक जी उपाय के लिखनावे धर्म बहालिया उथे सचे ही सच निबड़े चुन वख कडे जजमा लिया थाओ ना पायन कुड़िया और मुह काले दो जुग चालिया तेरे नैर तेसे जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखनावे।

का निरंकार है ना लगे निरकना चाहिए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दियाइए को रहना पर ये पाइए को रहना पर ये पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हम हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

सुलो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेतहा दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते बर्स बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सत्ता व्या ते तो लव्या

0: सचकाल पूर्ण वर्ती अकल काल बेताल बियो बीज बतले गए अब क्यों बेदाल जे को तो रुचि हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैब खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पगती जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: मोहल्ला पहला लब बाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी मलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी। वे तग आया पे बते बड़ते।

कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विशंभर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पावपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद।

परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नमो अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो यास यासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे

सुजंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग बेपुते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तप साध सोइए श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरे कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा दिख संत समूह।

एक रत्ती के मते मतंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पहे तो कहां पे पूपत एक अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसते है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिदारे तीर्थ नहन दया दम दान सुसंजम नेम।

द्वार सगल द्वार को छाट कै गयो तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम

शब्द गावणे आईया शब्दो तां गाव हो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो वा सतगुरु मैं पाया।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनो आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिख मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खनेहो तिखी वालहो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली ज्यों तू चला है तिव चल है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चला है तिवे चल है जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनो कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवे चलावहे एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन धुरों लिखिया आया एक फिरह कनेरे करह गल्ला गल्ली कने न पाया कहे नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कहे नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै बिन सहजे सहसा ना जाए न जाए सहसा किथे संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कद संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लग हो हर सुन रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा उपजाए जियो मैले बारहो निर्मल जियो ता मैले तिने जन्म जुवै हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेता लिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया जियो निर्मल बारहो निर्मल बारहो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहें गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख हो से बन जा रे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख हो से बन जा रे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख हो से बन जा रे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख हो

कहे नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारिया। जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार, भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया।

पाया, हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसे विट हो रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए, विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा है, हर वसे मन आए।

सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर न सूजे दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूट है, हम निर्गुण ले हो बारी। साध बख्शिंद

एजियो बते जन परम्यात सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जेवरदाता को ने सब सुने लोग सब आया सतगुरु ने सत्काज आप गवाया जिन सचो सत बुझाया जिन सचो

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: आम दुनिया ते ऐसा कहिंदे है कंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है। उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहिंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कह लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मंग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे बहुत चंगा लगे बगलगीर करन नू जी करे फिर कोई करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होने नू भी जी करता है, उस तो सदके होने नू भी जी करता है। सतगुर कहने तेनों कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुर दी संगत करदियां करदियां अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, ऐ मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मैनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिहड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखिया है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण की तमन्ना रही नहीं जाती। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जाता है, परमात्मा सुनाई देता है, परमात्मा सोच मंडल दे आ जाता है, वह मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। सतगुर ए बुजुर्गी सारिया की झोली च पावन ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जां कॉल किरण @604-581-1900।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the most, yeah, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरदयाल सिंह बाथौर डेयरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस। इन्वेस्ट करो 8 एकर्स अते 100,000 स्क्वायर फीट की ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस। तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवें विच नर्सरी दे नाल नाल 5 बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इनग्राउन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ। अज ही संपर्क करो गुरदयाल सिंह बाथ नू एट 604-351-5111.

मुख उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया भर के इतिहासक ग्रंथा नू वाचिए पढ़िए, इतिहास दे दो तरह के मनुख ही छाए हुए ने। इतिहासकारां ने अपनी कलम दे राही, अपने दिमाग दे राही सोच के जो लिखे है, उन्हां दी कलम दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमदी रही है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, सारी दुनिया का जो इतिहास है वो सिर्फ इंज कह लो दो तरह मनुखां का ही इतिहास है। केड़े? प्रथम ओ जिन्होंने जगत की झोली विच कुछ पाया है, कुछ दिता है, कला, ज्ञान, विज्ञान, सूझ समझ, धर्म, सुख, संपदा, कुछ भी झोली विच पाया होवे, उन्हां दा इतिहास है, उन्हां दी गल है। दूसरा उन्हां दा इतिहास है जिन्हां ने खोया है, खूब खोया है। जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास विच उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई गल नहीं है। तुसी पढ़ो दुनिया का इतिहास, बस दो तरह के ही मनुखां का इतिहास है। दिते होवे उसने कुछ, अपनी जान दिती होवे, अपनी सुख संपदा दे दिती होवे, कला दिती होवे, ज्ञान दिता होवे, विज्ञान दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, या ते देण वाले इतिहास दे छाए हुए ने या खोण वाले। मनुख दे मन दे ते शक्ति दा प्रभाव है। ते मैं अर्ज करा कि दोवें शक्तिशाली आंदे ने, देण वाले खोण वाले। हाथ ही कमजोर ने, दिमाग ही कमजोर है, कोल कुछ भी नहीं, जगत नू की देगा। पर कमजोर बंदा खो भी नहीं सकदा, ताकत नहीं, समर्था नहीं, किस तरह खोवेगा। खोण वास्ते भी ताकत चाहिदी है, देण वास्ते भी समर्था चाहिदी है। इस वास्ते समर्थ मनुख इतिहास ते छाए हुए ने। समर्थ मनुखां दा ही इतिहास है। मैं इस करां खोण वाले भी समर्थ ने, कुछ ना कुछ ताकत है। बिना ताकत तो कोई किसे दा कुछ खो नहीं सकदा। खोण वास्ते भी कोई शक्ति चाहिदी है, देण वास्ते भी कोई समर्था चाहिदी है। सियाणे कहिंदे ने इह जो देण वाले ने इह तीन तरह दे ने, और जिहड़े खोण वाले ने इह भी तीन तरह दे ने। इह देण वाले तीन तरह दे किहड़े ने? प्रथम मैं इहनां दा जिक्र करां, भगत, सूरबीर, दानी। खोण वाले तीन किहड़े ने? कातल, डकैत, दुराचारी। एक खोंदे ने, की खोंदे ने? कोई जान खोंदा है, कोई माल खोंदा है, कोई इज्जत, आबरू, असमत खोंदा है। तीन तल ते ही खतरा होंदा है, चौथा कोई खतरा नहीं। अगर कोई मनुख आके मैं खतरे दे चाहां, तो खतरा सिर्फ तीन तल ते होंदा है, चौथे तल ते खतरा नहीं होंदा। जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत आबरू नू खतरा, और कोई खतरा नहीं होंदा। इतनी मैरज करने हैं। जो जान लई खतरा बन जाए वो कातल है, जो माल लई खतरा बन जाए वो डकैत है, ते जो इज्जत आबरू लई खतरा बन जाए वो दुराचारी है। संसार दे इतिहास दे छाए हुए ने।
देण वाले भगत सूरबीर दानी। भगत की देंदा है जगत नो, जो ओ नाम जपदा है, जपन दे नाल उदे शरीर चो जो वाइब्रेशन बनती है, जो तरंगा निकल दियां नो जगत नो प्रभावित कर दियां ने। भगत कबीर कहिंदे ने, कबीर सो मुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। देही दा दे कहना की सारा शहर पवित्र हो जांदा है भगत दी भगती नाल। अगर उसकी सुरत जुड़ गई है, अगर उसनू अध्यात्मक आनंद मिल रहा है, तो ओदियां तरंगा कईयां नू अंदोलित करनगियां, कईयां नू प्रभावित करनगियां, एकाग्रता बख्शने। भगत अपनी जुड़ी हुई सुरत करके चारों पासे प्रभावित करता है अपनी उन्हां तरंगा दे नाल, भगती दा दान देंदा है। सूरबीर जो कमजोर दी बांह पकड़दा है, मजलूम दी बांह पकड़दा है, ते कमजोर दी खातर अपनी जान तक दे देंदा है। संसार दे इतिहास दे सूरबीर छाए हुए ने, भगत छाए हुए ने। तीसरे दानी जो किधरे भी धर्म कर्म समाज इंसानियत मुल्क कौम दी तामीर लई, कला ज्ञान विज्ञान दी उसारी लई धन नु खर्च करदा है। तो ये तीन छाए हुए ने, भगत सूरबीर दानी, एकाग्रता बख्शने। ये तीन देण वाले ने और तीन ही खोण वाले ने। जान नू खोण वाले, माल नू खोण वाले, इज्जत आबरू नू खोण वाले। खोंदे कौन ने शक्तिशाली, देंदे कौन ने शक्तिशाली। खोण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने असंतुष्टि करके, देण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने संतुष्टि करके। असंतुष्टि इस चों अधर्म दा जन्म होंदा है, संतुष्टि इस चों धर्म दा जन्म होंदा है। कहिंदे ने जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि अपने आप दे च नहीं होवेगी, अपने घर दे च नहीं होवेगी। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि प्राय घर दे च आउंदी है, दूजियां दे घर दे च आउंदी है। बड़ी ही एकाग्रता बख्शनी। जैसे भगत जयदेव जी महाराज फरमान करते हैं, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि प्राय घर दे चाहती है। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। ये आचरण तो गिरी हुई गल है कि कोई मनुख अपनी दृष्ट किसी दे घर ले जाए, दृष्ट नू नहीं रोक सकता। दृष्टि क्यों जाती है? असंतुष्ट है, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि दूजे दे घर ते जाती है, वो अपने आप विच नहीं आता। विद्वानों ने तीन तरह की असंतुष्टि मनी है, एकाग्रता बख्शनी। जरूर इस बच्चे नूं बाहर ले जाओ कुछ ते थोड़ा जिहा, क्योंकि ध्यान उचाट आता है, थोड़ी जिहा एकाग्रता आप जो है बख्शो। असंतुष्टि तीन तरह की होंदी है, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। असंतुष्ट मनुख अपने घर दे च नहीं आउंदा, उहदी दृष्टि अपने घर दे च नहीं हुंदी, दूसरियां दे घर दे च आउंदी है।
ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਸਾ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਚੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲ ਜਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਥੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜੈਸੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਵਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਵੈਸਾ ਸੰਯੋਗ ਜੁੜਿਆ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਾਲਬਦ ਹੈ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ
मैं अवगुणा दा सागर, मुझ अवगुण सह ना ही दोस। बाबा फरीद कहंदे ने तू गुणा दा सागर है पर मेरे विच अवगुण तेरा कोई कसूर नहीं। इतना वड्डा महान फकीर ये भी अपने आप विच असंतुष्ट है कि जिस तरह का मैनू होना चाहिदा सी मैं वैसा नहीं हाँ। ये परमात्मा मैं वैसा नहीं हाँ। ये तीन असंतुष्टियां ने, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि और व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये जड़ी असंतुष्टि है ये कातल डकैत दुराचारियां जन्म देंदी। परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, दृष्टि दूजियां ते, तो किसे दिन दूजियां तक इस दे हाथ पहुंच जाते हैं, इसके पैर पहुंच जाते हैं और अपने आप नूं काबू रखना औखा हो जाता है। सारी दुनिया विच कानून है, समाज के नियम भी हैं, धर्म भी है, लेकिन धर्म नूं तोड़ के, समाज के नियम तोड़ के, कानून नूं तोड़ के दूजियां दी जान माल असमत अक्सर जो है खो ली जाती है और खतरा रहिंदा है सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया असंतुष्ट लोगों नाल भरी पई है। जो जगत नूं देंदे ने इन्हें भगत सूरबीर और दानी, जो खोंदे ने कातल डकैत दुराचारी। ऐसा ते देखिया गया है कि तिन्ने अवगुण इक्को ही मनुख दे, वो कातल भी सी, वो डकैत भी सी, वो दुराचारी भी सी। तिन्ने गुण किसे एक मनुख दे नहीं देखे गए सन कि वो सूरबीर भी होवे, भगत भी होवे, दानी भी होवे। ये तीन गुण एक मनुख दे नहीं देखे गए सन। तीन अवगुण तो एको मनुख दे देखे गए और अक्सर इतिहास देच इस तरह के मनुख छाए हुए ने और रोजमर्रा की जिंदगी देच भी इस तरह के मनुख प्रगट होते रहते हैं कि वह कातल भी है, वह दुराचारी भी है और वह डकैत भी है। तिन्ने ही अवगुण एको ही मनुख दे, तिन्ने गुण एक मनुख दे नहीं अज तक प्रगट होए सन कि वह भगत भी होवे, वह सूरवीर भी होवे, वह दानी भी होवे। इतिहास खाली से इसकी पूर्ति की थी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। वो भगत ऐसा है कि मैदान जंग दे भी जे अमृत वेला हो गया तो समाधि ला के बैठ जाना और खो जाना परमात्मा की दुनिया च, लीन हो जाना। वो सूरवीर ऐसा है कि सवा लख नाल भी घिरिया होवे ते उसका हौसला पस्त नहीं आता, वो हिम्मत नहीं हारदा सी, उदी सूरबीरता दे फर्क नहीं पैंदा सी। और वो दानी ऐसा सी, अज तक इस तरह दे दानी होए ने जगत दे, कोई अन्न दे दानी, धन दे दानी, जमीन दे दानी, वस्त्रां दे दानी, ते सोना चांदी दान करन वाले। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल लकब जुड़े होया सरबंस दानी, सब कुछ दान कर देना। वो भगत भी है, वो सूरबीर भी है, वो दानी भी है। कहिंदे ने सूरबीर होण लई, दानी होण लई, भगत होण लई मन दे संतुष्टि दा होना बड़ा लाजमी है। बिना संतुष्टि तो ना कोई भगत बन सकदा है, ना कोई सूरबीर, ना कोई दानी। और बिना असंतुष्टि तो ना कोई कातल बन सकता है, ना कोई डकैत बन सकता है, ना कोई दुराचारी। और असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, सता आ जाए तो फिर ते बहुतियां दी जिंदगी खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी इज्जत खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी जान खतरे च होवेगी, बहुतियां दा माल खतरे च होवेगा अगर असंतुष्ट मनुख दे कोल शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। कानून कहिंदे ने कमजोर मनुखां दे लई है, ताकतवरां लई नहीं है। कमजोर की है वह कानून की है, एक मकड़ी दा जाला जिहदे च छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जांदे ने, हाथी तोड़ के लंघ जांदे ने। ये भी मैरिज करदे हैं।
असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, तो वह जितनिया तबाइया नू जन्म दे सकता है। एक दफा ते इतिहासकार भी कम उठते हैं, उन्हां दी कलम भी कम उठती है, उन्हां दी लेखनी भी कम उठती है। ईरान का एक महान प्रसिद्ध सूफी फकीर होया है शेख सादी, वो कहिंदा है, ई चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरा में शबद। अगर इस तरह का साजो समान किसी मुल्क दिस जमा हो जाए तो कहिंदा समझ लो मुल्क वीरान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरह का साजो समान, कैसा साजो समान, वो इसकी व्याख्या करता है। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। जिड़ा मीर है, राजा है, हुक्मरान है, वो ऐसा होवे जैसा गुर्ग बगयाड़। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल व्याख्या की है, राजे शीं मुकदम कुत्ते। बहुत सुंदर नक्शा खिंचया है अपने दौर विच, अपने समय विच जो वातावरण सी। ए फकीर कहिंदा है, मैं नजूमी ते नहीं हाँ, मैं ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं फिर भी दस सकदा कि अगर इस तरह का साजो समान किधरे जमा हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाता है, मुल्क नेस्तो नाबूद हो जाता है, वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। इन चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरा में शबद। कैसा साजो समान, कहिंदा है गुर्ग मीरो जिस देश दा राजा बगयाड़ होए, सग वजीरो ओदे जिहड़े वजीर होवन ओ कुत्ते होवन, ओ चीरे फाड़े ते ओदा बचिया कुचिया ए कुत्ते खान। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। दीवान जेड़ा है जो परजा दी गल हुक्मरान तक पहुंचावे, वो ऐसा होवे जैसे मूश चूहा। हिंदी च भी मूसा कहंदे ने, पर्शियन दे च भी मूश कहंदे ने। मूश दीवा में शबद, दीवान जेड़ा है वह मूश होवे, वो परजा दी गल टुक देवे, असलियत पेश ही ना आउण देवे। चूहे का कम की है, टुक देना, भावे वह खावे भावे ना खावे, पर टुक देंदा है। टुकना उसकी फितरत, टुकना उसकी सुभाव। इतनी ईर्षा होवे टुक देवे। दीवान ऐसे होवन जैसे कि चूहे। मैं देखदा सिख जगत नो काफी समय तो कई चूहे टुकदे पए, इना दा परोपकार, इना दी शहाद टुक के रख दो। भई इतिहास दे च देश नू आजाद कराया है, इनिया कुर्बानियां टुक दो। ये दानी ने, ज्ञानी ने, अमृत वेले उठण वाले ने, नाम जपण वाले ने, परोपकारी ने, सब कुछ टुक दो, कढ दो, टुक दो इतिहास नू, टुक दो सच्चाई नू। चूहा टुक देंदा है। शेख सादी का यह बड़ा सोहना एक कलाम, कहिंदा मूश दीवा में शबद। जिहड़ा दीवान है ना, यह मूश होवे, चूहा होवे, असलियत नूं ही टुक के रख देवे, असलियत जाहिर ही ना आउण देवे। कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले जब सूबा सरहंद की कचहरी दे पेश किए गए, तो कहिंदे ने उस वक्त 17 जज ही बैठे सन, मतलब जिहड़ी महफिल राजसभा दी दरबार लगया, 17 मनुख बैठे सन ते 17 ने फैसला देना सी। नवाब मलेरकोटला सी, इस दे विच दीवान चंदू सी, इस दे विच काजी सी, इस आले दुआले दे रजवाड़े सन, और खुद आप बैठा सी
ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤਿਫਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਰਾਏ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਜਦ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਾਰਮੀ ਰਫਤੀ, ਇਹ ਮਾਰਮੀ ਆਵਦ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਰਮੀ ਰਫਤੀ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਦ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਗਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਨ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ, ਅਜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬੁਲੰਦ, ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਸੱਪ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਕਬੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਐਸੀ ਚਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ, ਭੁਜੰਗੀ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਜੰਗਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੱਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ।
चाह शुद्ध के चों बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमा बस्त पेची दामार के मर्दी के अखगर खामोशा को नी के आतिश दमारा फिरोजा को नी। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं है जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। की होया तू चार चिनगारियां बुझा दतिया ने ते शोले भड़का दते ने। कहिंदे ने अथा जुलम जिथे हो जाए उस चो रोस जन्म लेंदा है। किसे वक्त इकबाल ने एक बड़ा कीमती शेर लिखिया सी, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तखरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। बड़ा कीमती उसका शेर है, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। कहिंदा हर बर्बादी देच कोई नवी उसारी आउंदी है, हर तबाही देच कोई नवी तामीर आउंदी है। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल फिलोसफर इस ढंग नाल सोचते ने, दार्शनिक इस ढंग नाल जो है सोचते ने, उन्हां दी इस ढंग दी जो है विचार आउंदी है। सिख इतिहास ज्ञानियां दा इतिहास, दानियां दा इतिहास, भगतां दा इतिहास, सूरबीरां दा इतिहास, शहीदां दा इतिहास, कितने चूहे लग गए ने टुकी जांदे ने टुकी जांदे ने टुक दियो। मूश दीवा में शवद दीवान ऐसा होवे जैसे के मूश चूहे, हुक्मरान ऐसा होवे जैसे के बगयाड़, वजीर ऐसे अवन जैसे के कुत्ते। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शवद, दूसरी पंक्ति, जाग जाहिद हर सनासी बूम आलम में शवद, जाग जाहिद हर सनासी। जाहिद लोग धार्मिक बंदे, धर्म दे मुखी ते धार्मिक बंदे ऐसे अवन जैसे के खोते। खरशनासी उन्हां दी पहचान खोतियां दी तरह हो गए। क्यों ऐसा क्यों कह दिता इस फकीर ने? पुराने जमाने बार बरदारी का कम ट्रांसपोर्ट का कम खोतियां तो ही लिया जाता सी। एक थां तो दूसरी थां ते जाना है, माल एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाना है, तो खोतियां दे आसरे ते सारा सिलसिला हुंदा सी। खच्चर खोते एक पिंड तो दूसरे पिंड, एक शहर तो दूसरे शहर माल ले जाते सन, हता के एक मुल्क तो दूसरे मुल्क। सादी कहिंदे खोते देते सौ पोथियां कुरान शरीफ दियां लद देई है, तो वो एक पिंड तो दूजे पिंड ले जाए तो ये जड़ा खोता है मौलवी फाजल बन जाएगा, फकीर साई बन जाएगा, वली अल्लाह बन जाएगा, कोई खुदा शनास हो जाएगा अगर ये लद के ले गया। हू बहु उदाहरण वजों इंज कह दईए, अगर एक खोते देते सौ गुटके सौ पोथियां गीता दे लद देईए ते वो एक शहर तो दूजे शहर पहुंचा देवे बेचारा खोता, तो क्या वो भगत जी बन जाएगा? उसे ही खोते देते सौ सुंदर गुटके लद देईए तो एक पिंड तो दूजे पिंड पहुंचा देवे ते हुण एक खोता गुरु का सिख बन जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, आत्म ज्ञानी हो जाएगा, लद के ले गया। पिठ ते धर्म ग्रंथां नूं लदर के कोई खोता वली अल्लाह नहीं हो जांदा, भगत नहीं हो जांदा, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जांदा। ते दिमाग दे उत्ते जिसने गीता नूं लद लिया है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सिर्फ दिमाग विच है, याद है, व्यवहार विच नहीं है। इहदे व्यवहार विच ने, व्यवहार विच ते कठोरता प्रगट आउंदी है, व्यवहार विच ते क्रोध प्रगट आउंदा है, व्यवहार विच ते ईर्ष्या है, व्यवहार दे इत्ते हंकार है। उन दिमाग दे सुखमनी साहब भी है, जबजी साहब भी है, बड़ा याद है इसको, बड़ी पढ़दा है बाणी। दिमाग दे व्यवहार दे नहीं है, व्यवहार दे बाणी नहीं प्रगट होंदी, व्यवहार दे गीता नहीं प्रगट होंदी, व्यवहार दे कुरान नहीं प्रगट होंदी। ते फकीर कहिंदा इंज धार्मिक बंदे इंज होण जिवें खोते बस चुकी फिरदे सिर ते भार, बाकी कुछ भी नहीं, बोझ चुकी फिरदे ने।

0: हुक्मरान कैसा होवे बग्याड़, वजीर कैसे अवन कुत्ते और दीवान कैसे अवन चूहे, तो आम प्रजा कैसी होवे उल्लू। मैं फिर अर्ज करा, बग्याड़ कौन बन जाता है? असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुख किसे नु खाएगा, किसी की जान खाएगा, किसी की इज्जत खाएगा, किसी की धन संपदा खाएगा। और असंतुष्ट मनुख दे कोल जे किधरे ताकत आ जाए, उते लाशां बिछा देगा। 1 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। चंगेज खान जिथों लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। हलाकू खान दे घोड़े लाशां तो लंघदे सन। कहिंदे ने कमजोर बंदा अपनी वाशना दी पूर्ति लई रब नूं मनदा है, गुरु नूं मनदा है, परमात्मा नूं मनदा है, क्योंकि जिहड़ी उसकी कामना है वह गुरु तो बिना पूरी हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, गुरु नूं मनदा है। ताकतवर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा, एक पासे रख देंदा। गल दोहां दी कामना दी है, धर्म दी नहीं है। ताकतवर बंदा अगर सामने रब नूं रखे परमात्मा नूं, क्या 1 करोड़ बंदियां नूं कतल कर सकदा है? क्या सड़कां ते हजारां लाशां बिछा सकदा है? कहिंदे ने ताकतवर बंदे नूं परमात्मा नूं एक पासे करना पैंदा, उहदी कामना पूरी नहीं हो सकदी अगर रब नूं अगे करे, क्योंकि रब ते दया है, परमात्मा ते प्रेम है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, परमात्मा ते साबर है, परमात्मा ते समान दृष्ट है, परमात्मा ते विशाल है। अगर परमात्मा नूं अगे करे तो क्या करोड़ां लाशां बिछा सकदा है? क्या घरां नूं उजाड़ सकेगा? क्या किसी की असमत इज्जत आबरू धन संपदा जान खो सकेगा? कहिंदे ने ताकतवर मनुख हमेशा अपनी वाशना की पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा है, एक पासे कर देंदा है, क्योंकि उन्हें सामने रखे तो अपनी वाशना की पूर्ति हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी वाशना की पूर्ति लई परमात्मा नूं अगे करदा, उहदे कोल कोई सहारा ही नहीं और कोई आसरा ही नहीं। ए परमात्मा तू ही मेरी टेक है, तू मेरी कामना की पूर्ति कर। वह भी कामना करके रब नूं मनदा है, ते ताकतवर भी कामना करके इनकार करदा है। सियाणे इस नूं समझणगे, पकड़नगे मूल गल कामना दी है, रब दी नहीं है। जिहनूं असीं धार्मिक दुनिया कहिंदे आ, उह भी धार्मिक दुनिया नहीं है। इह भी मैं अर्ज़ करदे आ, अधार्मिक दुनिया ते अधार्मिक है, धार्मिक दुनिया भी अधार्मिक। एक बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी, और मैं समझदा इको एक वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ऐसा कह सकते ने, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुन भी पाप है। हद हो गई, पुन भी पाप है तो क्यों करिए, की लोड़ है फिर? पंक्ति में थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी सुना रहे हैं, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पहले लभना पेगा कि मनुख पाप क्यों करता है। पाप करता है लोभ वस होके, हंकार वस होके, अज्ञान वस होके, वासना वस होके मनुख पाप करता है। ते मनुख पुन करे हंकार वस होके, मनुख पुन करे लोभ वस होके, मनुख पुन करे वासना वस होके, और मनुख पुन करे होमे करके। तो सतगुरु की बाणी कहती है फिर पाप पुन दे फर्क की होया? दोवां दे थले बुनियाद ते इको ही है। अज्ञान करके पाप कीता, अज्ञान करके पुन पिया करदा है। हंकार करके पाप कीते इसने, हंकार करके पुन पिया करदा है। वासना करके इसने पाप कीते ने, ते वासना कामना करके पुन पिया करदा है। फर्क की है? पाप पुन दोए एक समान। पापियां दे पाप ते पाप है गए ने, गुस्ताखी माफ पुनीत बंदियां दे पुन भी कोई पुन नहीं ने, क्योंकि थले हंकार खड़ा है। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नेह फल जात ते जिम कुंचल इसनान। तो मैं इस करा असंतुष्ट मनुख कातल बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, डकैत बन जाता है। संसार दे इतिहास दे च ये भरे पैने इन्हां दा जिक्र है। और संतुष्ट मनुख भगत बन जाता है, सूरबीर बन जाता है, दानी बन जाता है। जगत के सारे का सारा इतिहास ये दो तरह के मनुखों के आले दुआले घूमता है, खोण वाले देण वाले। सत्संग, गुरु की संगत, भजन कीर्तन, नाम अभ्यास, बाणी का पाठ मनुख नू संतुष्ट करता है, भगत बना देता है, सूरबीर बना देता है, दानी बना देता है, संपन्न बना देता है, महान बना देता है और उसके अंदर परम आनंद पैदा करता है। भगत एक खिड़ा होया फुल है, वो अपना स्वपन वंडदा है, अपने गुणा की महक जो है वंडदा है। इस तरह सत्संगी ये रब्बी दौलत सत्संग तो प्राप्त करता है। इतने ही बचने सुगत प्रवान करने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। असी नाम अभ्यास करदे आया, वाहेगुरु मंत्र का जाप करदे आ करदे आ, गुरु तो वह सौगात प्राप्त करी जिन्हों कहने संतुष्टि संतोख। और जैसे मन संतुष्ट होगा अंदर परम आनंद की वर्षा होगी, तो मन दे भार नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। साहब रहमत करन, बख्शिश करन, ये दैवी गुण सानू प्राप्त होवन। इतने ही वचन इस सबूत प्रवान करने, क्योंकि दासा ने वापस भी नोटिंगम जो है जाना है, तो घंटा उत्थे हाजिरी भर के फिर थोड़े तक जो है पहुंचे हैं। इतनी सेवा प्रवान करनी, इस वक्त तक आप बैठे रहो सुनन दा शौक मुख रखे, तो थोड़े शौक तो सदके कुरबान साहब ये थोड़ा शौक बनाई रखे, प्यार जो है बनाई रखे। बार बार सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ताजा अदरक लवो 98 सेंस पाउंड, बिना बीज वाला हदवाणा 78 सेंस पाउंड, पालक लवो 129 दी गुच्छी।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण @604-581-1900।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट, तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इस नु खरीदन जा वेचन ले तुहानू चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
5: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
4: 604-351-51